0: हाउ डू आई नो, बिकॉज अभी जेल सनस्क्रीन्स हैं, स्प्रेज हैं, यू हैव बार्स दैट यू कैन रोल ऑन योर स्किन. एवरी डे देयर इज अ न्यू ब्रांड दैट इज लॉन्चिंग इट्स न्यू सनस्क्रीन एज वेल. सो कुछ बेसिक्स हैं जो चेक करने चाहिए.
1: सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन लाइट होना चाहिए, उस पे नॉन कोमिडोजेनिक जो मैं आपको मॉइस्चराइजर में दिखा रही थी वो लेबल होना चाहिए, तो वो आपके लिए बढ़िया है. ओएमसी ऑक्सीबेंजोन फ्री होनी चाहिए आपकी सनस्क्रीन सेफ्टी वाइज, ठीक है. अगर आपको बहुत ही, अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, बच्चे हो 12 साल से कम की उम्र के, जिनको अभी यू नो जिनके हॉर्मोन्स बदलने वाले हैं, तो आप मिनरल सनस्क्रीन यूज कर सकते हो जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड होता है. ये क्या होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं, स्किन के ऊपर बैठे रहते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, और क्योंकि मिनरल्स हैं ये केमिकल्स नहीं है, तो एज एन केमिकल तो है ही, बट केमिकल फॉर्मूला इनका एक स्ट्रक्चर है, बट दे आर नॉट केमिकल सनस्क्रीन्स. सो ये सनस्क्रीन्स ऊपर बैठी रहती है स्किन पे, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, सेफ्टी प्रोफाइल इनका ज्यादा है. तो आप बहुत घबराते हो तो आप ये लगा सकते हो मिनरल सनस्क्रीन. बाकी जो लोग हैं, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए है, एक लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है. स्प्रे सनस्क्रीन जनरली बॉडी के लिए हम प्रेफर करते हैं, बट रिमेम्बर क्योंकि वो एरोसोल्स हैं, आप उन्हें इनहेल मत करो. सो लुक द अदर वे व्हाइल यू आर अप्लाइंग अ सनस्क्रीन एंड डोंट अप्लाई लाइक दिस. होल्ड योर ब्रेथ, अप्लाई इट, मसाज एंड देन यू टेक अ ब्रेथ. ओके, इंश्योर दैट यू सेफ, बीइंग सेफ एज वेल. स्टिक्स आर अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन बिकॉज दे आर वैक्सेस, सो यू कांट पुट दैट ग्रीजी थिंग ऑन योर स्किन, इट विल क्लॉग योर पोर्स. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होना चाहिए, मतलब वो यूवीए और यूवीबी रेज दोनों को केटर कर रहा है. बहुत लोग आजकल ब्लू लाइट में रहते हैं तो उनके लिए आयरन ऑक्साइड एक अच्छा फिल्टर है सनस्क्रीन में, जिसकी वजह से सनस्क्रीन का कलर टिंटेड होता है. यू नो वो टिंटेड में बहुत अच्छी सनस्क्रीन जो होती हैं वो टिंट मेकअप नहीं दे रही आपको, वो एक्चुअली आयरन ऑक्साइड है जो ब्लू लाइट फिल्टर है. इन माई बैग देर विल बी अ सनस्क्रीन विच इज टिंटेड बिकॉज आई यूज दैट ऑन माई आर्म्स एंड ऑन माई फेस व्हेन आई स्टेप आउट और व्हेन आई एम यू नो इन माई ऑफिस. सो आई प्रेफर अ टिंटेड सनस्क्रीन बिकॉज इट यू नो ऑफर्स यू ब्लू लाइट प्रोटेक्शन. तो आप ये देख सकते हो पीए 3+, 4+ अच्छा है और एसपीएफ 30 और अबव इज व्हाट इज इंडिकेटेड, बट 50 इज बेटर.
2: यू वर स्पीकिंग अबाउट हाउ ब्रिक्स इज ग्रोइंग फ्रॉम 5 नेशंस टू 11 एंड ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज वी आर टोल्ड वेटिंग इन द क्यू टू ज्वाइन दिस ग्रुपिंग. डज अ बिग ग्रुप, डज अ बिगर ब्रिक्स गिव हेफ्ट टू इंडिया और डज इट डाइल्यूट इंडियाज वॉइस?
3: BRICS from a three-country grouping in the beginning, Russia, India and China was the first group. From there it became 4, it became 5, today it became 11 or probably 12, and it will. There are many other countries which are keen to join. But today BRICS has emerged as a very important voice of the global south. BRICS ek aisa arrangement hai jisme European पावर्स एंड अमेरिका का इसमें इस ग्रुप में नहीं है. दिस ग्रुप रिप्रेजेंट्स द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल वॉइस के रूप में आज ब्रिक्स एमर्ज किया है और इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल इस यू कॉल इट ग्लोबल साउथ और यू कॉल इट नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड ये है. एंड प्लीज रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर मोदीज रिलेशंस विथ leaders in global south are a very important factor in India's you know, proactive role in BRICS. It will definitely help India, but it also will help you know give a good place to the voice of global south.
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
5: Co-powered by Air India, new feels good. Co-powered by Veka, India's largest selling UPVC window.

0: हाउ डू आई नो? बिकॉज अभी जेल सनस्क्रीन्स हैं, स्प्रेज हैं, यू हैव बार्स दैट यू कैन रोल ऑन ऑन योर स्किन. एवरी डे देर इज अ न्यू ब्रांड दैट इज लॉन्चिंग इट्स न्यू सनस्क्रीन एज वेल. सो कुछ बेसिक्स हैं जो चेक करने चाहिए.
1: सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन लाइट होना चाहिए, उस पे नॉन कोमेडोजेनिक जो मैं आपको मॉइस्चराइजर में दिखा रही थी वो लेबल होना चाहिए, तो वो आपके लिए बढ़िया है. ओएमसी ऑक्सीबेंजोन फ्री होनी चाहिए आपकी सनस्क्रीन सेफ्टी वाइज, ठीक है. अगर आपको बहुत ही, अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, बच्चे हो 12 साल से कम की उम्र के, जिनको अभी यू नो जिनके हॉर्मोन्स बदलने वाले हैं, तो आप मिनरल सनस्क्रीन यूज कर सकते हो जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड होता है. ये क्या होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं, स्किन के ऊपर बैठे रहते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, और क्योंकि मिनरल्स हैं ये केमिकल्स नहीं है, तो एज एन केमिकल तो है ही, बट केमिकल फॉर्मूला इनका एक स्ट्रक्चर है, बट दे आर नॉट केमिकल सनस्क्रीन्स. सो ये सनस्क्रीन्स ऊपर बैठी रहती हैं स्किन पे, ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं होती, सेफ्टी प्रोफाइल इनका ज्यादा है. तो आप बहुत घबराते हो तो आप ये लगा सकते हो मिनरल सनस्क्रीन. बाकी जो लोग हैं, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए है, एक लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है. स्प्रे सनस्क्रीन जनरली बॉडी के लिए हम प्रेफर करते हैं, बट रिमेम्बर क्योंकि वो एरोसोल्स हैं, आप उन्हें इनहेल मत करो. सो लुक दी अदर वे व्हाइल यू आर अप्लाइंग अ सनस्क्रीन एंड डोंट अप्लाई लाइक दिस. होल्ड योर ब्रेथ, अप्लाई इट, मसाज एंड देन यू टेक अ ब्रेथ. ओके, इंश्योर दैट यू सेफ, बीइंग सेफ एज वेल. स्टिक्स आर अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन बिकॉज दे आर वैक्सेस, सो यू कांट पुट दैट ग्रीजी थिंग ऑन योर स्किन, इट विल क्लॉग योर पोर्स. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होना चाहिए, मतलब वो यूवीए और यूवीबी रेज दोनों को केटर कर रहा है. बहुत लोग आजकल ब्लू लाइट में रहते हैं तो उनके लिए आयरन ऑक्साइड एक अच्छा फिल्टर है सनस्क्रीन में, जिसकी वजह से सनस्क्रीन का कलर टिंटेड होता है. यू नो वो टिंटेड में बहुत अच्छी सनस्क्रीन जो होती है वो टिंट मेकअप नहीं दे रही आपको, वो एक्चुअली आयरन ऑक्साइड है जो ब्लू लाइट फिल्टर है. इन माई बैग देर विल बी अ सनस्क्रीन विच इज टिंटेड बिकॉज आई यूज दैट ऑन माई आर्म्स एंड ऑन माई फेस व्हेन आई स्टेप आउट और व्हेन आई एम यू नो इन माई ऑफिस. सो आई प्रेफर अ टिंटेड सनस्क्रीन बिकॉज इट यू नो ऑफर्स यू ब्लू लाइट प्रोटेक्शन. तो आप ये देख सकते हो PA 3+, 4+ अच्छा है, और SPF 50, 30 और अबव इज वॉट इज इंडिकेटेड, बट 50 इज बेटर.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हाउ डू आई नो, बिकॉज अभी जेल सनस्क्रीन्स हैं, स्प्रेज हैं, यू हैव बार्स दैट यू कैन रोल ऑन योर स्किन. एवरी डे देयर इज अ न्यू ब्रांड दैट इज लॉन्चिंग इट्स न्यू सनस्क्रीन एज वेल. सो कुछ बेसिक्स हैं जो चेक करने चाहिए.
1: सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन लाइट होना चाहिए, उस पे नॉन कोमेडोजेनिक जो मैं आपको मॉइस्चराइजर में दिखा रही थी वो लेबल होना चाहिए, तो वो आपके लिए बढ़िया है. ओएमसी ऑक्सीबेंजोन फ्री होनी चाहिए आपकी सनस्क्रीन सेफ्टी वाइज, ठीक है. अगर आपको बहुत ही, अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, बच्चे हो 12 साल से कम की उम्र के, जिनको अभी यू नो जिनके हॉर्मोन्स बदलने वाले हैं, तो आप मिनरल सनस्क्रीन यूज कर सकते हो जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड होता है. ये क्या होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं, स्किन के ऊपर बैठे रहते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, और क्योंकि मिनरल्स हैं ये केमिकल्स नहीं है, तो एज एन केमिकल तो है ही, बट केमिकल फॉर्मूला इनका एक स्ट्रक्चर है, बट दे आर नॉट केमिकल सनस्क्रीन्स. सो ये सनस्क्रीन्स ऊपर बैठी रहती है स्किन पे, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, सेफ्टी प्रोफाइल इनका ज्यादा है. तो आप बहुत घबराते हो तो आप ये लगा सकते हो मिनरल सनस्क्रीन. बाकी जो लोग हैं, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए है, एक लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है. स्प्रे सनस्क्रीन जनरली बॉडी के लिए हम प्रेफर करते हैं, बट रिमेंबर क्योंकि वो एरोसोल्स हैं, आप उन्हें इनहेल मत करो. सो लुक द अदर वे व्हाइल यू आर अप्लाइंग अ सनस्क्रीन एंड डोंट अप्लाई इट लाइक दिस. होल्ड योर ब्रेथ, अप्लाई इट, मसाज एंड देन यू टेक अ ब्रेथ. ओके, इंश्योर दैट यू आर सेफ, बीइंग सेफ एज वेल. स्टिक्स आर अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन बिकॉज दे आर वैक्सेस, सो यू कांट पुट दैट ग्रीजी थिंग ऑन योर स्किन, इट विल क्लॉग योर पोर्स. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होना चाहिए, मतलब वो यूवी और यूवीबी रेज दोनों को केटर कर रहा है. बहुत लोग आजकल ब्लू लाइट में रहते हैं तो उनके लिए आयरन ऑक्साइड एक अच्छा फिल्टर है सनस्क्रीन में, जिसकी वजह से सनस्क्रीन का कलर टिंटेड होता है. यू नो वो टिंटेड में बहुत अच्छी सनस्क्रीन जो होती हैं वो टिंट मेकअप नहीं दे रही हैं आपको, वो एक्चुअली आयरन ऑक्साइड है जो ब्लू लाइट फिल्टर है. इन माई बैग देर विल बी अ सनस्क्रीन विच इज टिंटेड बिकॉज आई यूज दैट ऑन माई आर्म्स एंड ऑन माई फेस व्हेन आई स्टेप आउट और व्हेन आई एम यू नो इन माई ऑफिस. सो आई प्रेफर अ टिंटेड सनस्क्रीन बिकॉज इट यू नो ऑफर्स यू ब्लू लाइट प्रोटेक्शन. तो आप ये देख सकते हो PA 3+, 4+ अच्छा है, और SPF 50, 30 और अबव इज वॉट इज इंडिकेटेड, बट 50 इज बेटर.

यात्रा अनाउंस, यात्रा फ्रॉम पठानकोट टू जलंधर. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू बी पार्ट ऑफ द एंटी ड्रग यात्रा. कांग्रेस ऑल्सो डबल्स डाउन ऑन द आम आदमी पार्टी.

0: EDU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एक्सलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, इनोवेटर्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष हम ब्रिक्स के 20 ईयर्स मना रहे हैं। 2006 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल 4 देश थे। आज ब्रिक्स और ब्रिक्स पार्टनर्स मिलाकर 21 कंट्रीज का हमारा परिवार है। आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं। ग्रासरूट से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तक हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही है। ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है। भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। फ्रेंड्स, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पिछले 12 वर्षों में भारत ने इस मंत्र को अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज का आधार बनाया है। रेजिलियंस की बात करें तो भारत ने एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी तक सप्लाई चेन्स को अधिक डाइवर्सिफाइड और रिलायबल बनाया है। इसी रेजिलियंस का परिणाम है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आज ग्रोथ और स्टेबिलिटी का भरोसा दे रहा है। हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड, आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। 2 लाख के अधिक स्टार्टअप्स और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है। इसकी एक झलक आपको ब्रिक्स भारत इनोवेट्स एक्सपो में दिखाई देगी। हमारे स्टार्टअप्स, एआई, एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरीज पर काम कर रहे हैं और डिफेंस और स्पेस में भी नए फ्रंटियर्स पार कर रहे हैं। अब हमें ब्रिक्स के माध्यम से भी इन वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है। फ्रेंड्स, भारत इनोवेशन स्टोरी की एक और विशेषता है इनोवेशन एट पॉपुलेशन स्केल। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं और इस डिजिटल लेयर पर नए सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमने इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को एक ओपन इकोसिस्टम दिया है। हमें गर्व है कि भारत के इस वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम को कई देश अपना रहे हैं। ब्रिक्स देशों के इनोवेटर्स भी इस एक्सपीरियंस के आधार पर अपने देशों के लिए नए सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना। इसलिए हमारी अध्यक्षता में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्किल्स और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में नए कोऑपरेशन नेटवर्क का गठन किया है। स्टार्टअप्स और एसएमईज को मार्केट और फाइनेंस से जोड़ने के लिए हमने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क, ब्रिक्स एमएसएमई पोर्टल और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड जैसी पहले की हैं। इन सभी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क्स का लाभ आप सभी उठा सकते हैं और हमारे देशों के बीच इन्वेस्टमेंट और टैलेंट का आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है। ब्रिक्स विमेन्स विंग्स बिजनेस अलायंस भी हमारे विजन का अहम हिस्सा है। हम चाहते हैं कि विमेन एंटरप्रेनर्स हमारी ग्रोथ स्टोरी को लीड करें। हमें बहुत खुशी है कि भारत में आयोजित इस अलायंस की मीटिंग में करीब 200 विमेन बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, आज जब ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल से मेरा आग्रह रहेगा, क्या आप ब्रिक्स देशों के बीच टॉप टेन ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं? क्या हम हर वर्ष 100 ब्रिक्स स्टार्टअप्स को दूसरे ब्रिक्स मार्केट्स में स्केल करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने बिजनेसेस के बीच 1000 नई पार्टनरशिप विकसित कर सकते हैं। इन तीनों मापदंडों पर हमें हर वर्ष अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए। आइए ब्रिक्स के एम्बिशन को एक्शन में और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदले। ब्रिक्स आगे बढ़े और दुनिया को भी आगे बढ़ाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, एक्सेलेंसीज, Distinguished leaders, ladies and gentlemen, with that we've come to the conclusion of this leaders' session. Thank you all for joining us today. May I request all our distinguished guests to kindly remain seated until the esteemed members of the leadership on the dais have exited the hall.
2: And that's the BRICS family photograph that you see on your television screen. Very significant points being made by Prime Minister Narendra Modi, by the Russian President Vladimir Putin, by Iranian President Masoud Pezeshkian, and also by the South African leader, President Cyril Ramaphosa. Very, very important points made by the heads of state and government. The images that you see on your television screen, of course, of that family photograph earlier before the BRICS Business Forum leaders, the reports were submitted, and then the Prime Minister spoke of India's presidency. He spoke of the importance of BRICS as a grouping. This is a very, very powerful grouping that represents 50% of world population, 40% of world GDP, and 25% of global trade. And it is growing as a body. But there is a roadmap that the Prime Minister gave. It's been 20 years. As it moves forward in the towards the 30th year or enters the third decade, the focus has to be on reducing barriers. In fact, this is one point that was commonly made almost by every head of state and government who spoke, that it's time now to move forward from talking to finding solutions and benefiting economies of various countries more effectively. In fact, Russian President Vladimir Putin, he drew a direct parallel with G7. He said, when you look at G7 and the G7 output, the seven most powerful global economies, predominantly Western economies, what did he say? That they contribute about 18% to global GDP. When you talk of BRICS, it contributes 40% to global GDP. The Iranian president, of course, went a step ahead. He spoke of BRICS coming together to fight unilateralism. In fact, where I'm standing in just a moment from now, Prime Minister Narendra Modi and the Russian President Vladimir Putin, they'll just be stepping out in a moment from now, exactly where we are standing. Their cavalcade is now being placed here. And I want you to, for a moment, look at those pictures here. That is the Russian President's car. That is the Russian President's cavalcade. And that is the movement that is taking place right now. Here, when we see the movement of all the heads of state and government, they will be coming out from this exit and they will be leaving here. So we'll slip into a very, very quick break and come back with lots more on this big story here on India Today.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हाउ डू आई नो? बिकॉज अभी जेल सनस्क्रीन्स हैं, स्प्रेज हैं, यू हैव बार्स दैट यू कैन रोल ऑन ऑन योर स्किन. एवरी डे देर इज अ न्यू ब्रांड दैट इज लॉन्चिंग इट्स न्यू सनस्क्रीन एज वेल. सो कुछ बेसिक्स हैं जो चेक करने चाहिए.
1: सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन लाइट होना चाहिए, उस पे नॉन कोमेडोजेनिक जो मैं आपको मॉइस्चराइजर में दिखा रही थी वो लेबल होना चाहिए, तो वो आपके लिए बढ़िया है. ओएमसी ऑक्सीबेंजोन फ्री होनी चाहिए आपकी सनस्क्रीन सेफ्टी वाइज, ठीक है. अगर आपको बहुत ही, अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, बच्चे हो 12 साल से कम की उम्र के, जिनको अभी यू नो जिनके हॉर्मोन्स बदलने वाले हैं, तो आप मिनरल सनस्क्रीन यूज कर सकते हो जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड होता है. ये क्या होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं, स्किन के ऊपर बैठे रहते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, और क्योंकि मिनरल्स हैं ये केमिकल्स नहीं है, तो एज एन केमिकल तो है ही, बट केमिकल फॉर्मूला इनका एक स्ट्रक्चर है, बट दे आर नॉट केमिकल सनस्क्रीन्स. सो ये सनस्क्रीन्स ऊपर बैठी रहती हैं.

स्किन पे ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं होती, सेफ्टी प्रोफाइल इनका ज्यादा है। तो आप बहुत घबराते हो तो आप ये लगा सकते हो मिनरल सनस्क्रीन। बाकी जो लोग हैं, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए है, एक लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। स्प्रे सनस्क्रीन जनरली बॉडी के लिए हम प्रेफर करते हैं, बट रिमेम्बर क्योंकि वो एरोसोल्स है आप उन्हें इनहेल मत करो। सो लुक द अदर वे व्हाइल यू आर अप्लाइंग अ सनस्क्रीन एंड डोंट अप्लाई इट लाइक दिस। होल्ड योर ब्रेथ, अप्लाई इट, मसाज एंड देन यू टेक अ ब्रेथ। ओके, एंश्योर दैट यू सेफ, बीइंग सेफ एज वेल। स्टिक्स आर अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन बिकॉज दे आर वैक्सेस, सो यू कांट पुट दैट ग्रीजी थिंग ऑन योर स्किन, इट विल क्लॉग योर पोर्स। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होना चाहिए, मतलब वो यूवी और यूवी बी रेज दोनों को केटर कर रहा है। बहुत लोग आजकल ब्लू लाइट में रहते हैं तो उनके लिए आयरन ऑक्साइड एक अच्छा फिल्टर है सनस्क्रीन में, जिसकी वजह से सनस्क्रीन का कलर टिंटेड होता है। यू नो, वो टिंटेड में बहुत अच्छी सनस्क्रीन जो होती है वो टिंट मेकअप नहीं दे रही आपको, वो एक्चुअली आयरन ऑक्साइड है जो ब्लू लाइट फिल्टर है। इन माई बैग देर विल बी अ सनस्क्रीन विच इज टिंटेड बिकॉज आई यूज इट ऑन माई आर्म्स एंड ऑन माई फेस व्हेन आई स्टेप आउट और व्हेन आई एम यू नो इन माई ऑफिस। सो आई प्रेफर अ टिंटेड सनस्क्रीन बिकॉज इट यू नो ऑफर्स यू ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। तो आप ये देख सकते हो पी ए 3+, 4+ अच्छा है और SPF 50, 30 और अबव इज वॉट इज इंडिकेटेड, बट 50 इज बेटर।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today. India's only democratic newsroom.

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।
2: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.

0: The Commerce Secretary just set out the outcomes for BRICS cooperation in the area of trade during India's chairship. However, it requires all of us to work in partnership together to translate our work into jobs for our people, wealth and prosperity for BRICS member states, who represent half of mankind and 40% of the global GDP. Friends, BRICS today represents almost one-fourth of global trade, and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured exports. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner. We believe trade amongst partners should be deep, resilient, with diversified supply chains, and ensuring that at no point of time trade becomes an impediment to growth and the well-being of the people of each member state.
1: आप सारे लोग जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नाम पर सोच रहे हैं कि आपको हेल्थ के बारे में बहुत पता है, यू आर वेरी इन्फॉर्म्ड एंड लाइक अ फॉलोअर ऑफ हेल्थ वेल्थ, आपको बता देते हैं आपकी नॉलेज कितनी गलत है, क्योंकि सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI जानना जरूरी नहीं है. द रियल थिंग टू नो इन योर फूड इज GL, दैट इज ग्लाइसेमिक लोड.
2: ये सेम नहीं है, इज इट लाइक राम श्याम सीता गीता?
1: राम श्याम सीता गीता चौक इन चीज बोल सकते हैं. आइए समझते हैं. इस वीडियो के लिए हमने बात करी है डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर वी मोहन से. GI के बारे में आपको ये बात पता है कि अगर बिलो 55 है तो लो GI बोला जाता है, अगर 55 से 70 तक है तो मीडियम GI बोला जाता है, अगर 70 अबव है तो हाई GI बोला जाता है. लेकिन ये GI कैलकुलेट कैसे होता है आपको पता है? GI इन अ फूड इज कैलकुलेटेड इन अ लैब और रिसर्च ऑन फिक्स्ड पोर्शन, विच इज नॉट हाउ यू एंड आई ईट, राइट? हम उतना ही फिक्स पोर्शन थोड़ी ना खाते हैं जिसकी वजह से हमें हमारे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता होगा. इसीलिए GL को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फैक्टर करता है ना सिर्फ क्या आपने खाना खाया पर कितना आपने खाना खाया एंड दस आपकी बॉडी पर कितना इम्पैक्ट पड़ा. एग्जाम्पल देते हैं, आप वाटरमेलन खाते हैं, उसका GI बहुत हाई होता है क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज वाटर. सो आप एक नॉर्मल स्लाइस अगर लेंगे तो उसका GI आपको हाई बताएगा, लेकिन क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, वाटर बहुत ज्यादा होता है, उसका ग्लाइसेमिक लोड ऑन योर बॉडी इज वेरी लिटिल. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ब्राउन राइस. बहुत ही हार्मलेस बोला जाता है, मीडियम GI है, बट एक नॉर्मल बोल ऑफ ब्राउन राइस अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो उसका कार्ब इनटेक तो बढ़ ही गया ना, कॉम्प्लेक्स कार्ब है हम समझ रहे हैं, लेकिन कार्ब इनटेक तो है, तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो हाई जोन में चला जाएगा और आप खाए जा रहे हैं सोच के इसका GI तो बहुत कम है. नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देते हैं, मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं. बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है कि इसे डायबिटिक्स को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और एक अच्छा डॉक्टर आपको बताएगा कि आप कम क्वांटिटी में अगर मैंगो खा रहे हैं तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है. नाउ GI के हिसाब से 100 ग्राम्स ऑफ मैंगो, मतलब एक मैंगो समझ लीजिए, उसका GI होता है कम से कम अराउंड 55, राइट? एक मैंगो के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, तो अब GL इसका कैलकुलेट करने के लिए GI इनटू द नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू हैविंग डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये निकल कर आता है 8. बट दिस विल चेंज अगर आपने इसमें मैंगोज बढ़ा दिए, अगर आपने इसका GI जो 55 है इनटू 15 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दिए डिवाइडेड बाय 100, तो इमीडिएटली आपका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो हाई हो जाएगा. क्रक्स ऑफ द मैटर इज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट दैट यू आर ईटिंग एंड दैट शुड डिफाइन योर डिसीजन मेकिंग, नॉट जस्ट द GI ऑफ द फूड. कितना खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आप फिर भी अगर ग्लाइसेमिक लोड अपने खाने का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसका एक कैलकुलेटर लिंक है वो कॉमेंट्स में डाल रहे हैं.